0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच। चलदी दा नाम गड्डी, आते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सुमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 0390-866-55 और विजिट tireforce.com.au।
0: जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं, डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन लिए। जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड, त्रुगनिना, अते 347 डॉनस्टेल स्ट्रीट, डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, भरोसे दी निशानी।
0: किचन का स्टाइल डल लगता, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया ZJ स्टोन मेसन, पार्टी करनु बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने हां डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन। बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने। ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स, वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
3: टेंशन निरी टेंशन
4: की होया,
3: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार, मुकदे ही नहीं।
4: काका जी टेंशन छड्डो, फोन चको, कॉल करो VY इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा

0: 9077973।
1: VY Immigration and Education Consultant।
0: हर कदम तुहाडे नाल।
2: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक होजू पर इंश्योरेंस वालिया नू लीगल वालिया नू एथे परदेस विच समझाऊंगा किवे?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालिया ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलती है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लाइक कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: मैनू अपनी नवी दुकान ली प्रीमियम 3D इल्यूमिनेटेड साइन दी अर्जेंट लोड सी। क्विक साइनेज ने इन हाउस डिजाइन, प्रिंटिंग ते प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन सिर्फ 4 to 5 दिनों विच पूरी कर दित्ती। ग्लोइंग शॉप फ्रंट तो व्हीकल रैप्स तक ब्रांड पूरी स्ट्रीट विच सब तो वख चमक उठिया। विक्टोरिया ते साउथ ऑस्ट्रेलिया विच 12 सालों तो साइनेज लीडर्स। अपनी बिजनेस नू चमकाओ, कॉल 1300151616, quicksignage.com.au।
5: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
6: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरीबी टोयोटा दे नाल।
5: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
7: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 to 1 लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2-fold lending।
8: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालों तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, AAT अपील्स, स्किल्ड वीजा, PR, US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
8: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन।
9: रेडियो हांजी 1674 प्रोग्राम हांजी मेलबर्न दे गल्लां बातां साडियां आउण जाण बारे चल रहियां ने। सापां कितें जाणा ते जां फिर किसे नूं सद्दणा ते की ते किद्दां किद्दां ते कुछ कुछ हो वापरदा, सो उहदे बारे गल्लां बातां चल रहियां, इदां क्यों ते किवें ते की इहदा हल कीता जा सकदा, तो इस विषय के उत्ते। हाँ जी, तुम दोबारा कर लियो जी, माफ़ी चाहना थोड़ी कॉल कटेगी। तो मेरे नाल ने जसप्रीत जी।
10: बिल्कुल, जिहड़ी भी अपनी गल्लां चल रही उहदे विच मैनूं इह भी लगता है कि हर एक इंसान की, जिवें आपां करियर वाइज भी गल कीती सी ना पिछले उस दे विच, कि हर एक दा अपना सर्कल है करियर वाइज भी। हुण उहदे विच भी यही हुंदा कि उस च भी किन्नी सारी हुंदी है, किसी दे फंक्शनस हुंदे करियर दे विच भी, जे उह इदा दी फैम मैंबर बन जाते कि तुहाडी फैमिली नाल भी बहुत क्लोज कनैक्टेड हो जाए, हालांकि वह तुहाडे तुसी फस्ट परसन हो जानण वाले। सपोज मैनू कोई जानता है, लेकिन उहदी सांझ मेरे हसबैंड नाल, मेरे बच्चों नाल, क्योंकि बच्चे भी कॉमन स्कूल च जाते, तो उत्थे भी बंदा फसदा कि किस हिसाब नाल आपां प्रायोरिटी सैट करिए। तो यही कमिटमेंट्स होंगे कहीं किस हिसाब नाल कि तुसी कैटेगराइज करोगे कमिटमेंट्स नूं, क्योंकि कई बार कमिटमेंट्स होंगे कि यार इहदे नाल ते मैनू रोज़ दा वाह वास्ता है। सपोज मैं तुहानूं इनवाइट किया, मेरे घर का फंक्शन है, फिर मैं कहंगी यार भाजी रोज मिलते अज आए नहीं, है ना, वह है ना, एक भावे दसो ना दसो लेकिन एक दिल च आ जाता कि यार आए नहीं। फिर उही गल मैं इदा दी, मैं रोज मिलती हाँ, मैनू पता है भाजी किन्ने बिजी है, एक एम्पथी कि मैं समझ सकती हाँ वह किन्ने फसे रहेंदे, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड कि उन्हें तो नहीं आया होना।
9: अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की उही है ना, कि आप जो पहला सारा डिस्कस करके हटे हाँ, कि वह फिर जिथे जे मान लो तुम बहुत ज़्यादा किसी लैके तुम वो भी आ भी आए नहीं भी कुछ रिश्तेदारियां जो ना साझा भी आवे ही आवे, तो फिर आप जड़िया होंगे ने उन्होंने आप डेट रखने तो पहला पूछते हैं इस दिन बारे सोच रहे हैं की विचार है तुहाडा, है ना, तो वह जरा फिर रख के वह तो वैसे भी हो सकता ना, मान लो तुम रख लिया भावें तुम रोज़ मिलता तो अगला बिजी आ, उन्हें पहला कितने कमिट

0: attention, ladies and gentlemen. This is your captain. 30 flights, Melbourne to India, ya Pakistan. Sydney to India, ya Pakistan. Kithe bhi ja sakti hai.
1: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo, Hi-Fi Travel Stay. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo. 1300-533-311 te. Ya online book karo. hi-fi-travels.com.au te.
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम, कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2-Fold Lending.

0: करनी गलत ठीक है यार, गलत ठीक है, है? मेरे पीजे किंग नमस्ते सत श्री अकाल आदाब रेडियो हां जी 1674 सुन रहे सारे सुनने वालों नु श्रोतियों नु प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं हां कृष्णा, मेरे नाल बलकीरत एंड तुसी जुड़ चुके हो साडे नाल अज दे घैंट जे अत जे एपिसोड शो दे जिदा नाम है बॉयज मीट अप। तो तुसी गाना सुन रहे से कली खड़ी बाय वतन साही ते म्यूजिक डॉक्टर जूस दा ओ तुहानू कच दे ग्लास टुटदे होए तो पता लग गया होएगा। टॉप कमेंट इस वीडियो दा यही कहंदा पिया कि डॉक्टर जूस बस ग्लास तोड़न नू रखया
1: नहीं पहला जूस भी पींदे ने,
0: पहला जूस पींदे
1: ने, ग्लास ही नहीं तोड़दे
0: फिर ग्लास तोड़दे ने। हाँ जी बल्कि जी किवें हो, की हाल चाल ने थोड़े?
1: वेखो जी अहीं कल्ले बह के की करना जे तुहाडा मैसेज ना आया यार। नवा बहुत कुछ आया वा कृष्णा जी मार्केट दे विच, खास करके आ पिछले जेड़े महीने दो नंगे है ना सितंबर अक्तूबर, इन्हां च ते ऐम वी जिन्ना किसे ने भर के रख्या हुंदा खजाना ते ओह कहिंदा वा वी किते मैं ना लेट हो जा, उधरों दूजा कहिंदा वी मैं ना लेट हो जा, तीजा कहिंदा मैं ना लेट हो जा, चौथा कहिंदा मैं ना लेट हो जा, ते इदां ही करदे करदे ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਈਪੀ ਐਲਬਮ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕਸ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ, ਹਨਾ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਚੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਚੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2026 ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੜਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦੇਣੀ ਆ।
0: ਤੜਥ ਯਾਰ,
1: ਹਾਂਜੀ
0: ਤੜਥੱਲੀ ਥੋੜੀ ਕਹੇਗਾ ਤੂੰ,
1: गलत
0: गल यार ठीक है, नहीं सही है साडा वर्ड है असीं वरतांगे, नहीं गुड गुड गुड। होर की चल रहा? वैसे एक मैं गल बहुत सही की थी, पर मैनूं एक बड़ी वियर्ड चीज लगी जिहड़ी आह कल परसों हुई है कितें
1: की
0: कि अर्जन ने वैसे पहले भी इदा किया हो कि एको दिन दो एल्बमां सुट्टियां, पहली बार वेखिया कि सिंगर ने एको दिन दो सिंगल ट्रैक सुट्टे,
1: वो इदा ही है फिर वखरा ही करदा ना,
0: कुछ डिफरेंट करदा। गाने आया दो, एक आया सेड एंड डन एंड दूसरा आया बैड एस, मैनू बैड एस बहुत वधिया लगा,
1: मेनू दूजा भी वधिया लगा, कई लिरिक्स ओहदे इदा दे विचों नाइस ने, मतलब हाले कि ओह सारे जणे कह रहे ने इंटरनेट दे उत्ते वायरलिटी चलण दी इहनू लैके कि बिल्कुल डिफरेंट ही अर्जन दा इह जोनर नहीं ही, अर्जन ने बाहर होके काम कीता है ना, वर्सटैलिटी दे उत्ते काम कीता, कई कहंदे आ जी वीडियो वधिया बणी आ पर म्यूजिक नहीं वधिया होया, कोई कहंदे ओह
0: मर्सी तों बगैर ना तां करके कहंदे आ,
1: कह लो तुसीं इदां कह लो भावें ओह करन वाली काम ते वधिया कीता मुंडे ने,
0: काम तां ओके
1: पर जिहड़े डिफरेंट करना ते फिर तां ऑब्वियसली किसी नाल ही करना पऊगा ना, क्योंकि हुण एक बंदे दा जोनर हो सकता है कि उहदी जिहड़ी पिच आ जां उहदी कह लो कि क्वालिटी इको तरह की ही हो सकती
0: है, हर किसी ने अपनी नीचे
1: चेंज करनी है तो फिर ऑब्वियसली तुहानू टीम चेंज करनी पैनी।
0: अच्छा एक भी चक्कर है मैं नोटिस किया, ये साडी सारी लाइफ ते भी साडे सारयां दी लाइफ ते भी ढुक जांदी है चीज़ है ना, कि आपां कोई चीज़ करदे होए किसी नूं वेखीए या फिर आप भी करदे होइए तो सानूं टोक टकइया हो जांदा कि यार सेम चीज़ क्यों करी जांदे हो ना, कुछ डिफरेंट करो,
1: नाले वो सदा मर्सी साहब इधर बिजी होने ना करन वाले सीज़न
0: विच, पर मैं उही तो मैं गल ते आ रहा है कि वो हुण लोकी कहंदे आ कि पहले कहंदे रहे कि मर्सी नूं छड़ दे है ना, कि
1: सारे
0: उहदे तो बिना हुण इक गाना आया तो लोकी कह रहे कि यार मर्सी तों बगैर क्यों कीता,
1: लोक फिर ओह गल है लोकी ने ना
0: कहेंगे जान के नहीं सिखाए सच्ची खांसी आ गई,
1: अपना होता पकड़ लेते लोग यहाँ तो छोड़ दिया,
0: वाह
1: समझे ना
0: ब्यूटीफुल मेरे गालिब, क्या बात है
1: ये है,
0: क्या बात
1: डुप्लीकेट गालिब
0: डुप्लीकेट गालिब गालिब फ्रॉम सेड एल्बम्स गाइस
1: ये डे टाइम ते सो गाइस गल इदा वा कि टू मैनी गाने आ चुके ने मार्केट दे विच, चाहे वो करण औजले दा सीजन 1 आ, उस तो भी पहला जे गल करिए ते आई एम एन आर्टिस्ट AEIOU दे नाल एन लगदा गाइस, तुहानू पता ही है जे तुसीं ग्रामर पढ़ी होवे ते,
0: वेरी गुड,
1: इस करके एन आर्टिस्ट उहनां ने नाम रख्या ही ओ एल्बम दा, ते ओ आई सी की दलजीत साहब दी,
0: आहो दलजीत दी भी आई है ना,
1: उन्हां दा तुसीं सुनिया ही कोई गाना गाना के नहीं?
0: नहीं मैं नहीं सुनिया कोई,
1: ओह सब तो पहला
0: बहुता हिट भी नहीं होया मेरे ख्याल नाल, शायद
1: 4 सितंबर नूं ओह पहला रिलीज़ होई ही, इन्हां बाकियां तड़थलियां तो पहला दी गल है, जिहदे च कुल मिला के 7 गाने ही आई थिंक, फिजावान, लव लाइक दिस, गुस्ताखी वालियां, स्वीट थिंग, लैम्बो ते डेविल,
0: ਕਿਆ ਬਾਤ
1: ਹੈ। ਇਹ ਗਾਣੇ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਲਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ,
0: ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ।
1: ਤੁਸੀਂ ਲਵ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ। ਵੈਸੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਡੈਵਲ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਪਰ ਉੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਜੀ ਲਵ ਲਾਈਕ।
0: ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁੱਡ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਡੈਵਲ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਡੇਢ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ 'ਤੇ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਕੰਮ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਨੇਹਾ ਬੋਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਰ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਕਿਆ ਕੁੜੀ ਹੈ ਬਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਡੱਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬਸ ਚਲੋ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੋ ਜੀ ਕਿ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ ਹੋਵੋ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਚੋਇਸ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਲ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਆ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਿਲ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਘੈਂਟ ਘੈਂਟ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਗਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਖੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੈਡ ਐਸ ਬਾਏ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ।
1: ਓਹੋ ਬੰਦੂ ਲੱਗਾ ਦਲਜੀਤ ਦਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ
0: ਅਗਲਾ।

0: ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurrana and Saad Ali Khan in Urda Teer.
2: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
3: Desh bhakti to yaad aage.
4: Desh kaun sa hai? Ye bhool gaya.
1: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Ye border chal rahi hai.
1: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: Diwali, roshni ka tyohar. To chalo, shaan ke saath zaike se lagayein. Isme char chaand. रिवाजों के रंग खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी चना मसाला पालक पनीर किचन किंग दाल मसाला चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ
7: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
8: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमिग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
7: नंबर ता दे बंसल इमिग्रेशन वालियां दा
8: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406 660 960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: ब्रोकर्स। अपने इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1-670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com।
2: किथे वज गई तेरी गड्डी?
3: गड्डी ता ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लाइक कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
4: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न।

0: वाह
1: चगे पपियाना पपिया
0: वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम बैक टू बॉयज मीटअप. मैं हाँ कृष्णा मेरा बलकीरत ते समा हो चुका थोनू बाय बाय टाटा टेक केयर कहंदा. पर उस तो पहला जांदे ना थोड़ा थोड़ी जी इंफॉर्मेशन दा शेयर करदे जाइए ते करो जी शेयर.
1: सब तो जड़ी लेटेस्ट एल्बम है जी वो आई है निर्वैर पन्नू दी परसोना जड़ा ना रख्या जिहदे विच 14 गाने ने. चौदह गाने ब्लूम होलो दिल अखर बिलो चाम वैन क्लिफ जी ना लगे मेरा क्वाड टप्पे हीरे
2: फ्लॉस
1: फ्लॉस एक 500 जैम जी एम 500 ग्राम होना
2: 500 ग्राम देखो
1: की है इधर वेच सुने
2: हैं ना. डियर डैड,
1: डियर डैड भी है मतलब ये ऑब्वियसली डैडी दे इर्द गिर्द होगा गाना ये भी सुनना. तो ये जड़ी की कहते हैं कि हूँ तक जी आप म्यूजिक के उत्ते चौथे नंबर पर आ.
2: अच्छा
1: दिस एल्बम गुड
2: यार. मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एक चीज मैं कॉल आउट करना चाहूंगा. सब तो वधिया पोस्टर वर्क निर्वैर पन्नू दे एल्बम तो पिछली मकतूब दा भी यार परसोना भी बहुत प्यारा पोस्टर. मतलब
1: एक पासे फुल दूजे पासे पासे ताहोल नहीं.
2: हे बिल्कुल सही. ते आपा जांदे जांदे गाना पता केड़ा सुनांदे जावांगे.
1: आपा सुनावांगे पर उस तो पहले आपा दस दिए कि इधर निजर साहब दी भी पिछले महीने एल्बम आई ऑटोबायोग्राफी जिहदे विच 10 गाने सी. आई डोंट नो कि इफ यू आर अ फैन ऑफ देम एंड यू लिसन
2: निजर ने मैं नहीं
1: करी सुनता गाने गिल साहब दी आई हाजिर जिहड़ी पिछे जे तुसीं इन्ने गाने उहदे च सुणे वी ओह वी सितंबर दे महीने रिलीज़ होई आ. चन्नी नटान जी दा वी आए ने चार सोंग पिछले महीने उहदे च कीता गुड बॉय शुड बी मी ते एक गैसोलीना गैसोलीना चलिया गाना नाइस.
2: गैसोलीना
1: हांजी हांजी
2: ओही वाला गैसोलीना
1: नहीं इन्हां ने ओबवियसली बदलिया
2: होगा.
1: अमृत मान दी वी आई है जी फार्मेसी चार गाने ही जग्गी जी जग्गी भी एक सिंगर है शायद तुहानू पता
2: होगा.
1: इनफर्नो उन्हां दा भी एक आई सी जिहदे विच 11 सोंग कड्डे ही पर थोड़ी पुरानी हो चुकी है.
2: जग्गी ने तो यार रीलां बनवातियां इफ यू नो ते
1: जदों सुनाया भी है आपां सरोतियां
2: आहो आपां सुनाया पहले आपां तुहानू सुनांदे हुंदे जी नवें नवें गाने असीं सुनांदे
1: मजाक. जॉर्डन संधू जी भी इन्हां ने नवी कर
2: रहे
1: नवे च बूट बाड़ जे पाए इन्होंने बीबी लिखा वा बड़े जे बूट.
2: चलो
1: बाकी जाते जाते आप दसना कि जेड़ा जेड़ा मेरा फेवरेट आ आई थिंक कृष्णा जी तुम भी अपना दस्यो कि जेड़ा गाना आप शुरू च नहीं सुनाया कली खड़ी वतन जिदे डॉक्टर जूस क्लास थोड़े सी ओ वाला अपना फेवरेट आ जेड़ा सिंगल ट्रैक उन्होंने कटिया ही हुण तक दे जिन्ने भी आए ने.
2: हां लेटेस्ट सॉन्ग्स
1: दा लेटेस्ट एल्बम ईपी सॉन्ग्स नु लै लिए जे ते तुही दसना वा जी ताडा केड़ा वा.
2: हां तुसी भी सानू यार मैसेज मुसेज करो थानू किन्नी वारी क्या मंडे तो वीरवार किसी भी टाइम मैसेज पा जाया करो.
1: या
2: बॉयज मीट अप
1: दैट्स नॉट फेयर यू नो
2: प्लीज डू इट
1: यू डोंट केयर या
2: असि असि मेंटली गाली वर्जे प्लीज सांझी मेलबर्न च साडे लई मैसेज पाओ. ज्वेलरी आइटम लै दो फिर लै दो यार वादू पैसा कमाया सारे ने. ओके बाय बाय टेक.

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: किचन का स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, फाड़े करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन। सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
3: चलदी दा नाम गड्डी, आ ते सुनिया ही होना। ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे, उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स, अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स, जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स, यूनिट 1, 19-25 सोमर्टन रोड, कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।

0: ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਸਿੱਧੇ ਆਓ ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਾਮ। ਜੋ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ, ਸਕਿੱਲਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਐਮਪਲੋਇਰ ਸਪੋਂਸਰਡ ਵੀਜ਼ਾ, ਡਾਮਾ, ਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ 0490054596। ਗਰੇਵਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ .com.au ਤੇ ਜਾਓ। थोड़ा कोई हल करिए।
1: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्सटीट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य, लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11, daviddavis.com.au।
0: जी तुसी बीमार हो ता एआई कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लई कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au। किचन दा स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुण टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, तुहाडे घर नूं बनाए एकदम क्लासी। असीं बनाउने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलदी है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुण ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड, मेल्टन।

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे नाल ने। एटीओ ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, एटीओ डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेतन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नो दियो मजबूत दिशा। आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तो हाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
2: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
1: सोना चाहिदा,
3: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाईबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे 22 कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स।

0: रेडी पुराना सोना बाय बैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिए गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजब रेट ते डेली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
1: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना ते तुहाड़ी गड्डी कोई भी होवे उनू चलाउण लई ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिन्हां कोल लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाड़ी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सुमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 03908-6655 और विजिट tyreforce.com.au
2: हां जी हां जी ओए हां जी हां जी
3: हां जी रेडियो

0: ब्रोकर्स अपनी इंश्योरेंस की हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। इंश्योरेंस शर्ता लागू।
1: ता किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी ता ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू एथे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें।
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है। सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते लै सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडी आपणिया दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
0: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड़ नू, नाले वरियां तों स्किल्ड वीजा 186 180।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: Now the ultimate power in the universe.
2: Radio Haji 1674.

गुड म्यूजिक दिता है। कौन है ये म्यूजिक? एल डी फजिलका। सो अपने इलाके चो इन्होंने कोई लिया है? नहीं, इलाका तो नहीं, फजिलका कितने? तो ये है बनू भदौड़ तो। ओके, हुण एक मुंडा होर चंडीगढ़ तो। पिछले दिनां च तुहानू दस्सिया कि दो शो अलग अलग चल रहे ने, एक पासे हसल चल रहा, दूजे पासे हाई पॉप स्टार शुरू हो गया। ये च जिहड़ा मुंडा अलमोल साला हैगा, ये कमाल ही कर रहा है, घेंडी गाने गा रहा है चंडीगढ़ी आ। सो दो बैक टू बैक हसल आले पासे हरमीत ते इधरों अनमोल।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सन विच भी तुहाडी सेवा विच।
3: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वो भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिनां च भी तुहाडे अपणियां दा साथ नहीं पाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
0: हुण तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉस। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस। ऑस्ट्रेलिया विच इमिग्रेशन दा मसला ना, जाओ इधर उधर, सीधे आओ आईएमई एडवाइजर, अपनी मां बोली विच समझण तुहाडी लोड नू, नाले वरियां तो स्किल वीजा 186 189 190 482 491, स्किल असेसमेंट, पार्टनर वीजा, पेरेंट वीजा, जा स्टूडेंट वीजा तो पीआर तक हर इमिग्रेशन प्रोसेस ली एक्सपर्ट गाइडेंस। आज ही परोसे नाल संपर्क करो आईएमई एडवाइजर, कॉल 0290631618। दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं। इसमें चार चांद, रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
4: This station is now the ultimate power in the universe.
5: Radio Haji 1674.
6: Hi Australia, hi Melbourne, मैं आपका माजन बोल रहा हूँ, यानी कि मैडी, और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

0: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਪੀਟ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ।
1: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
2: Autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan in Urda Teer.
3: Ek Pakistani jasoos Hindustan jayega.
4: Desh bhakti to yaad aa gayi.
5: Desh kaun sa hai? Ye bhul gaya.
2: A spy mission gone wrong with hilarious moments.
5: Ye border chal rahi hai.
2: Nahi ji, ye to Urda Teer chal raha hai. From October 9th at cinemas near you.
6: Diwali, roshni ka tyohar. To chalo, shaan ke saath zaike se lagayein. Isme char chaand. रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
7: ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वद लेंडर्स दे नाल तुहाडे लिए बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494763700 और व्हाट्सएप 2Fold लेंडिंग।
8: दिल्ली में घर पर मेरी बहन बस एक रंग देखते ही समझ आती है कि उसे अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है, तो चाहे वो उस बहन के लिए हो जो चुनने में थोड़ा वक्त लगाती है या उस बहन के लिए जो पहले से अपना मन बना चुकी है। रिमिटली के जरिए पैसे भेजना सिर्फ एक मनी ट्रांसफर नहीं, उससे कहीं बढ़कर है, क्योंकि जब पैसा आगे बढ़ता है तो जिंदगी भी आगे बढ़ती है। रिमिटली, दुनिया भर में पैसे भेजे।
9: अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
7: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरबी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
10: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com.
11: बिजनेस चलाना आसान नहीं, पर सही सलाह नाल हर चैलेंज आसान हो सकता है। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स तुहाडे नाल ने ATO ऑडिट्स, टैक्स डिस्प्यूट्स, ATO डेट्स, बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग ते बिजनेस खरीदन जा वेचन संबंधी प्रोफेशनल गाइडेंस। अपने बिजनेस नु देओ मजबूत दिशा, आज ही विजिट करो sebipartners.au। सेबी पार्टनर्स वाइज टैक्स एडवाइजर्स, तुहाडे बिजनेस दे भरोसेमंद टैक्स एडवाइजर्स।
12: जदों तुहाडे लई जां तुहाडे किसे प्यारे लई सही होम केयर प्रोवाइडर चुनन दा समां आउंदा है, तां माई केयर दे साडे केयरर्स मेलबर्न अते इस तों बाहर भी तुहाडी मदद लई तैयार हन। असीं बजुर्ग आस्ट्रेलिया लोकां नूं निजी देखभाल योजनावां, उन्हां दी भाषा बोलण वाले केयरर्स अते समर्पित देखभाल साथी नाल घर विच ही रहण विच मदद करदे हां। 1-800-642-273 ते फोन करो जां माई केयर होम केयर लिख के खोजो। ए है MICARE।
8: दिल्ली विच करे मेरी भैन, वो बस एक रंग देख के समझ जाती है कि उसनू अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है, इसलिए भावे तुहाडी भैन नू अपनी पसंद चुनन लई वक्त लगता होवे जां उसने पहला ही अपना मन बना लिया होवे। रिमिटली राही अपने घर पैसे भेजना सिर्फ एक लेन देन नहीं है,

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: Brokers. अपनी इंश्योरेंस की हर लोड़ ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा, कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: आ किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी तां ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नू, लीगल वालियां नू इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंह स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंह स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन।
0: ओ पाजी, एक पासे मॉर्गेज उते ग्रोसरी ते हुन इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी रॉकेट बन गए ने।
3: हुन टेंशन छड़ो जी, गवर्नमेंट दी नवी बैटरी रिबेट नाल हुन सोलर ते बैटरी लगवाना हो गया होर भी आसान। बिजली दा बिल घट, टेंशन भी घट।
0: फिर लवाइए कित्थों?
3: सन करंट वालिया कोलो, 2012 तो मेलबर्न दी एक भरोसेमंद अते अवार्ड विनिंग सोलर कंपनी।
0: आज ही सन करंट नो कॉल करो ते अपना फ्री असेसमेंट बुक करो 0406-021-246 ते। जे तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने, बंसल लॉयर्स। तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 4229058 और विजिट bansallawyers.com.au।

0: अज्ज बुझारत।
1: ओके
2: okay.
0: तीन पए पंज खड़े अठ लियावन गेड़ा, मेरी बात बुझला नहीं ता बन चेला मेरा।
1: सवेरे सवेरे
3: चेला ही बन जाने, एडा औखा नहीं सानू आउंदा।
1: सौखे सौखे लाने चाहिए,
0: सौखा ही है।
3: हर गुरु बाबा जी
0: जय हो
3: जय हो।
1: इहदी ते हिंट देनी पैणी, नहीं तो पहले ही असीं हार मान जांदे आ।
0: हिंट ए आ भी जो इंडिया दे नोट ते बाबा जी हुंदे आ ना, ओहदे रिलेटेड आ कुछ।
3: अच्छा ओके, फिर दोबारा की? तीन
0: पए पंज खड़े अठ लियावन गेड़ा, मेरी बात बुझला नहीं ता बन चेला मेरा।
3: ओके, इंडिया दे नोट ते हैं। इंडिया दे नोट ते कौन? गांधी हुंदा इंडिया दे नोट ते।
0: हां जी,
3: ते ओदे सिर ते तीन वाल हुंदे आ।
0: गांधी दे कोल होर भी कुछ हुंदा?
1: चश्मा
3: है,
1: लाठी
0: नोट नेड़े आ रहे हो।
3: आहा ओके, कान कानते कानते दो हुंदे पर
1: नोट
3: कानते दो हुंदे है ना। तीन की होया फिर? तीन लता, एक डांग पा के, एक डांग हुंदी है तेको। हां ए भी नहीं है?
0: नहीं
3: और की हुंदा? लीड़े कपड़े तो गोदा नहीं हुंदे, और की फिर?
1: शॉल जी हुंदी है एक।
3: हां
0: हां जी, शॉल दे नेड़े आ गए तुसी।
3: अच्छा, शॉल दे होर नेड़े आ गए। ओके ओके, तो मतलब फिर कपड़े ही होना वा फिर। ओके,
0: कपड़े दे रिलेटेड ही आ। अच्छा, कपड़े किससे बन रहे?
1: धोती।
3: अच्छा, कॉटन?
0: नहीं,
1: धोती। और की बच्चा
0: बहुत नेड़े हो गए तुसी हुन।
3: अच्छा, और नेड़े हो गए।
0: कॉटन किस तो बन रही है?
3: हां,
1: रुई।
0: कॉटन किस तो बन रही है? कॉटन
1: रुई।
0: रुई तो कॉटन इक्को ही हुंदा।
1: टांग ते जीभ जिवे चरखा।
3: अच्छा, तीन
0: तीन
1: कितने कंफ्यूज किते इस कुड़ी ने।
3: चलो हुन फिर एक्सप्लेन करो तुम।
0: हां, चरखा की मैं एक्सप्लेन कर दिया।
3: हैं की
1: बोल दी कि चरखे नु की मैं एक्सप्लेन करा?
3: नहीं, मतलब अपनी बुझारत एक्सप्लेन करो ना। तीन खड़े की फिर दसो।
0: तीन पए पंज खड़े अठ लियावन गेड़ा, ते मेरी बात बुझला नहीं ता बन चेल मेरा।
3: आहो, ते दसो ना भी तीन की ही, पंज की ही, अठ की ही।
0: अठ ता ओ जेड़े गेड़े कटदा ओ होएगा शायद।
3: अच्छा,
0: ते पंज ओ जेड़े ओदे डंडे हुंदे आ शायद ओ होणगे।
3: अच्छा,
0: ते तीन जेड़े जेड़े ओ धागे पाए हुंदे आ जिहदे विच तुइयां।
3: ओके ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है,
1: मान लिया जी।
3: ठीक है, थोड़ा जा साडी आईक्यू लेवल तो बड़ा सवाल ही थोड़ा जा।
1: फिर भी अपन नु आंसर आ गया।
3: थैंक यू थैंक
0: यू, बाबा जी ने पाया सी ना।
3: हां, जय हो। रात है की?
0: हां जी, आज जो भी सुनाएगी।
3: हां जी,
4: सत श्री अकाल अंकल जी ते आंटी जी।
3: सत श्री अकाल,
1: की हाल चाल है?
4: वधिया, तुसी सुनाओ?
3: वधिया पुत्तो, अज सुस्ती पई है ना?
4: हां जी,
3: की गल हो गई? मेनू भी पई है।
4: मैंने ठीक हुई है।
3: अच्छा, हुणे हुणे ठीक हुई है? ओहो, होर सौण नु जी करन रिया सी ना?
4: हां जी।
3: ओए, राती राती लेट सुते ही?
4: नहीं,
3: हां सच, तुसी ते ठीक नहीं सी लास्ट वीक। हो गए हो ठीक? हो ना हुन ठीक हो?
4: हां जी,
3: बिल्कुल ओके। थोड़ा जा गला। ओके, चलो बाबा जी तुहानू छेती छेती ठीक करन, ते थोड़ा जा ते बहुता जा गला ठीक कर देन।
4: थैंक यू।
3: ते की सुनाओगे?

0: तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
2: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनिया ही होना, ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले। याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग, मैकेनिकल रिपेयर्स, इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने। तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स। यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड। कॉल 03908-6655 और विजिट tireforce.com.au।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल immigration.com.au।
5: We might all be different, but one thing unites us. We're all Victorians and we all deserve a say in its future. Are you ready to vote this state election Saturday 28 November? Not sure? Check your enrolled online. If you've changed your name or address, update your details. And if you've turned 18, you must enroll. So come on, Victoria. Make sure you're enrolled by 8 p.m. Tuesday 3 November and make your voice heard. Visit vec.vic.gov.au to enroll today. Authorised by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: This autumn, laugh out loud with Ayushman Khurana and Sada Ali Khan.

0: उड़ता तीर।
1: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा।
2: देशभक्ति तो याद आ गई,
3: देश कौन सा है ये भूल गया।
0: A spy mission gone wrong with hilarious moments।
4: ये बॉर्डर चल रही है।
0: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है। From October 9th at cinemas near you।
5: किचन द स्टाइल डल लगदा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ वी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ कर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410 045 555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
6: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड डायमंड बुलियन सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी। ऑस्ट्रेलिया च अपना घर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, तो टेंशन क्यों। टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना, होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप टू फोल्ड लेंडिंग।
7: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
8: हाँ जी।

0: जी तुसी बीमार हो ता AI कोल नहीं डॉक्टर कोल जाने हो, फिर कानूनी मसले विच फैसला खुद क्यों? याद रखो, डिले इन लॉ इज डैमेज इन लाइफ। फैमिली इशू, प्रॉपर्टी दा मसला, कोई इमिग्रेशन दी समस्या या कोई भी कानूनी मैटर, इको नाम जो कम तुहाडे लिए कर देने। बंसल लॉयर्स, तुहाडा भरोसा, साडा तजर्बा ते जित अपनी। कॉल 422-905-860 और विजिट bansallawyers.com.au।
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है।
0: Attention, please. दिल कहता है कर जाना है। Flight search करके थक गए। Switch करो Hi-Fi Travel से। Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 ते या online book करो hi-fi-travels.com.au ते। हुन थोड़े मोड़े नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानु होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: दिन भर दे कम्मा कारां च घर पैसे भेजना शामिल करना चाहुंदे हो, जिंदगी तुहानू चाहे जिथे भी ले जावे, वर्ल्ड रेमिट नाल तुसी अपने फोन तो ही जल्दी ते सुरक्षित पैसे भेज सकते हो, वह भी वधिया रेटा ते घट फीसा नाल। सब तो रुझेवे वाले दिना च भी तुहाडे अपनिया दा साथ निभाउणा हुण बहुत आसान है। अज ही वर्ल्ड रेमिट ऐप डाउनलोड करो अते हर ट्रांसफर नाल अपने घर दे होर नेड़े महसूस करो।
4: हां जी हां जी,

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: किथे वज गई तेरी गड्डी?
2: गड्डी तां ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नूं, लीगल वालियां नूं इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवें?
1: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने। इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है, मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।
5: सोना चाहिदा,
6: भरोसा चाहिदा,
5: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा, चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी, पुराना सोना बाईबैक एंड एक्सचेंज तुरंत, कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
7: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नूं उनां दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
8: पिछले साल काम वाली थां ते होए एक हादसे विच मैं बुरी तरह झुलस गया सी। हाँ, ये समा औखा सी, पर मेरे काम वाली थां तो मेरा हाल चाल पुछया जांदा रहा कि मैं ठीक हाँ या नहीं। असी मिलके दफ्तर दे काम राही मेरे लिए काम ते वापस आउण दा तरीका लभ्या। हर रोज अपनी जिंदगी नूं मुड़ली ते आउंदे वेखणा बहुत ही राहत भरिया एहसास सी।
9: काम वाली थां ते सट लगन तो बाद मुड़ काम ते आउणा सौखा नहीं हुंदा, पर ये अपनी जिंदगी मुड़ ली ते लियाउण दा एक अहम हिस्सा है। गल करदे रहो, योजना बनाउंदे रहो, लगे रहो। वर्क सेफ रिटर्न टू वर्क लिख के सर्च करो।
10: तुसी सुन रहे हो इस प्रोग्राम दा रिपीट ब्रॉडकास्ट।

0: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी, लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं, वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे। अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना, और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है। यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो, तो अभी आवेदन करें। सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स, विक्टोरियन सरकार, 1 ट्रेजरी प्लेस, मेलबोर्न द्वारा अधिक।
1: टेंशन नीरी टेंशन
2: की हुआ
1: अथे इमिग्रेशन दे एने पंगे ने यार मुकदे नहीं।
2: काका जी टेंशन छोड़ो, फोन चको, कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु, जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा, एम्प्लॉय स्पॉन्सर, पार्टनर या पेरेंट्स, या वीजा, स्किल्ड माइग्रेशन, स्टूडेंट वीजा, MRT या RRT, अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने। हुणे ही अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93-33
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au।
1: याद रखो 9077-9733।
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट,
1: हर कदम तुहाडे नाल।
3: दिस ऑटम लाफ आउट लाउड विद आयुष्मान खुराना एंड सादा अली खान इन उड़ता तीर।
4: एक पाकिस्तानी जासूस हिंदुस्तान जाएगा।
5: देशभक्ति तो याद आ गई,
6: देश कौन सा है ये भूल गया।
3: अ स्पाई मिशन गॉन रॉन्ग विद हिलेरियस मोमेंट्स।
7: बॉर्डर चल रही है?
3: नहीं जी, ये तो उड़ता तीर चल रहा है फ्रॉम अक्टूबर 9th एट सिनेमा।

0: इंश्योरेंस ब्रोकर्स। अपनी इंश्योरेंस से हर लोड ले, याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा। कॉल 0491-999-555। गिद्दा इंश्योरेंस, शर्ता लागू।
1: In 2006, one in four young people were bullied. In 2026, one in four young people are still bullied. What the buck? We're Project Rocket, and we need you to give a buck about bullying so we can drive change. Every buck given helps fund youth-driven programs in Aussie schools. Give a buck about bullying. Search Project Rocket. That's Rock It to donate today.
2: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन। हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग।
3: 8 Grace Way, Revan Hall. Target.

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: सोना चाहिदा,
2: भरोसा चाहिदा,
1: क्वालिटी ते बाई बैक वी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेम स्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बाई बैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ वी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042। हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: दिवाली रोशनी का त्योहार, तो चलो शान के साथ जायके से लगाएं इसमें चार चांद। रिवाजों के रंग, खानों का स्वाद और दिवाली का एहसास रखें बरकरार। अपनी थाली को बनाएं खास शान के वेज बिरयानी, चना मसाला, पालक पनीर, किचन किंग, दाल मसाला, चाट मसाला और ढेरों मसालों की रेंज के साथ। इस दिवाली खुशियां बने और भी रोशन शान के साथ।
1: विक्टोरिया वासियों, क्या आपको गैस पर खाना बनाना पसंद है? कड़ाके की ठंड वाली रात में तुरंत गर्म हो जाने वाला घर, जब भी आपको जरूरत हो पूरे परिवार के लिए लगातार मिलने वाला गर्म पानी, तो जब तक आप इसका आनंद ले सकते हैं ले लीजिए, क्योंकि स्टेट लेबर इन सब पर बैन लगाने की योजना बना रही है। बैन केरल से कहिए कि आप नहीं चाहते कि कोई आपको बताए कि आपको अपने ही घर में खाना कैसे बनाना है, घर गर्म कैसे रखना है या नहाना कैसे है, पर जाकर गैस सब्स्टिट्यूशन रोड मैप को नहीं कहें। डेविड डेविस एमपी द्वारा अधिकृत सदर मेट्रोपॉलिटन रीजन के सदस्य लेवल 1 670 चैपल स्ट्रीट साउथ 11 davidavis.com.
0: की चाहिदा ऑस्ट्रेलिया दा वीजा लोना जा वीजे ले मशवरा चाहिदा, मिल जुगा। सिद्धे आओ गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस, ऑस्ट्रेलिया विच हर तरह दिया वीजा लोड़ा ले एक भरोसे योग ना, जो स्टडी वीजा, स्किल्ड वीजा, एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा, डामा, पेरेंट पार्टनर ते विजिटर वीजे विच डील करदे ने। हुणे कॉल करो प्रतिंदर गरेवाल नु 0490054596। गरेवाल वीजा सॉल्यूशंस.com.au ते जाओ, आओ थोड़ा कोई हल करिए।
2: एक प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षक या प्रशिक्षक के रूप में आप बच्चों के जीवन को आकार दे सकते हैं, आप अपना करियर बना सकते हैं, अपनी विशेषज्ञता साझा कर सकते हैं और विक्टोरिया के बच्चों और परिवारों पर स्थायी प्रभाव डाल सकते हैं अपने करियर को संवारे। अधिक जानकारी के लिए vic.gov.au/kinder पर जाएं। विक्टोरियन सरकार मेलबर्न द्वारा अधिकृत।

व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनॉन्ग। ज्वेलर्स परोसे दी निशानी।

0: attention, ladies and gentlemen. This is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है.
1: Attention please. दिल कहता है कर जाना है. Flight search करके थक गए. Switch करो Hi-Fi Travels से. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 से या online book करो hi-fi-travels.com.au से.
2: मेरा देश Incredible India. त्रुगनिना विच अपने हर पैन प्राणु उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहे हैं. तुसी एथे इंडियन मसाले, दाला, ग्रोसरी दा हर सामान वाजिब रेट से ले सकते हो. पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी. नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार. ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394. दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते. मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच.

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: टेंशन टेंशन मेरी टेंशन
3: की होया
2: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
3: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
2: या 90-77-97-33
3: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
2: याद रखो 90779733
3: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
2: हर कदम तुहाडे नाल

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं, बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट goldleafdairy.com।

0: टेंशन टेंशन निरी टेंशन
1: की हुआ
0: थे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे नहीं
1: काका जी टेंशन छोड़ो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नू जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा इम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-503-503
0: या 90-77-93
1: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
0: याद रखो 9077-9733
1: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
0: हर कदम तुहाडे नाल।

0: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
1: अमृत एक कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हॉर्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
0: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो।

0: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपनी हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले दाला ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम भी नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी लई नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
1: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India या Pakistan, Sydney to India या Pakistan कितने भी जा सकती है।
2: Attention, please. दिल कहता है कर जाना है। Flight search करके थक गए। Switch करो Hi-Fi Travels से। Your local travel agency, rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book करनी है? आज ही call करो 1300-533-311 से या online book करो hifitravels.com.au से।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन .com.au।
2: किथे वज गई तेरी गड्डी?
1: गड्डी तां ठीक हो जू, पर इंश्योरेंस वालियां नूं, लीगल वालियां नूं इत्थे प्रदेश विच समझाऊंगा किवें?
2: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है
3: सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने।
2: इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम, ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट, फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है, ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम ते। फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते। सिंक स्मैश रिपेयर, 8 ग्रेस वे, रेवन हॉल।

0: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
1: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू पूर्वी सोखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेयर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: Now they're better.

जाने मन कोई, मनै सुरत होवे मन बुद्ध, मनै सगल पवन की सुध, मनै मोचो टाने खा, मनै जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम न

तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सच्यार तौलै उपर केता पार धरती होर परै होर होर तिस्ते पार तलै कवन जोर जी जा।

एक बार जो तुझ पावे साई पली का, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर

पाए जाए। ए अंत न जाने कोए, बहुता कहिए बहुता होए, वड्डा साहेब ऊंचा थाओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए, जेवड आप जाने आप आप। नानक नदरी करमी दात, बहुता कर्म लिखिया ना जाए, वड्डा दाता तिल ना तुमाए, केते

आप श्री मुखवागपात सही दसवीं छपे संतो प्रसाद चक्र चेनी हर वर्ण जात हर पात नहीं जाय रूप रंग हर रेख पे को कह न सकत कह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश तो कहि जाय कोट इंद्र इंद्रान सा सहान गणित जाय तिर भवन में सुर नार्य सुर नेत नेत बंतरन कहत तब सर्व नाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण सुमत जाम क्रिया छंद नमस्तंग अकाले नमस्तंग कृपाले नमस्तंग रूपे नमस्तंग अनूपे नमस्तंग अभेखे नमस्तंग अलेखे नमस्तंग अकाये नमस्तंग अजाये नमस्तंग अगंजे नमस्तंग अभंजे नमस्तंग अडामे नमस्तंग अठामे नमस्तंग अकर्मंग नमस्तंग अतर्मंग नमस्तंग अनामंग नमस्तंग अतामंग नमस्तंग अजीते नमस्तंग अभीते नमस्तंग अभाये नमस्तंग अडाये नमस्तंग अनिले नमस्तंग अनादे नमस्तंग अछेदे नमस्तंग अगाजे नमस्तंग गंजे नमस्तंग भंजे नमस्तंग उदारे नमस्तंग अबारे नमस्तंग सुएक नमस्तंग अनेक नमस्तंग अभूते नमस्तंग अजूपे नमस्तंग निर्कर्मे नमस्तंग निर्भर्मे नमस्तंग निर्देशे नमस्तंग निर्भेषे नमस्तंग निर्नामे नमस्तंग निर्कामे नमस्तंग निर्धाते नमस्तंग निर्घाते नमस्तंग निर्दूते नमस्तंग अभूते नमस्तंग अलोके नमस्तंग अशोके नमस्तंग निर्तापे नमस्तंग अथापे नमस्तंग त्रिमाने नमस्तंग निदाने नमस्तंग अगाये नमस्तंग अबाये नमस्तंग त्रिवर्गे नमस्तंग असर्गे नमस्तंग प्रभोगे नमस्तंग संजोगे नमस्तंग अरंगे नमस्तंग अभंगे नमस्तंग अगमे नमस्तरमे नमस्तंग जलाश्रे नमस्तंग निराश्रे नमस्तंग अजाते नमस्तंग अपाते नमस्तंग अमजवे नमस्तस्त अजवे अदेशंग अदेशे नमस्तंग अभेशे नमस्तंग नितामे नमस्तंग निर्वामे नमो सर्वकाले नमो सर्वद्याले नमो सर्वरूपे नमो सर्वभूपे नमो सर्वखापे नमो सर्वथापे नमो सर्वकाले नमो सर्वपाले नमस्तस्तु देवे नमस्तंग अभेवे नमस्तंग अजन्मे नमस्तंग सुबन्मे नमो सर्वगौणे नमो सर्वपौणे नमो सर्वरंगे नमो सर्वपंगे नमो कालकाले नमस्तस्तु द्याले नमस्तंग अवर्णे नमस्तंग अमरणे नमस्तंग जरारंग नमस्तंग कृतारंग नमो सर्वदंदे नमो सत्वंदे नमस्तंग निर्साके नमस्तंग निर्भाके नमस्तंग रहीमे नमस्तंग करीमे नमस्तंग अनंते नमस्तंग महंते नमस्तत रागे नमस्तंग सुहागे नमो सर्वसोखं नमो सर्वपोखं नमो सर्वकर्ता नमो सर्वहर्ता नमो जोग जोगे नमो भोग भोगे नमो सर्वद्याले नमो सर्वपाले चात्री चांतो प्रसाद अरूप हैं अनूप हैं अजू हैं अभू हैं अलेख हैं अभेक हैं अनाम हैं अकाम हैं अदय हैं अभय हैं अजीत हैं अभीत हैं त्रिमान हैं निदान हैं त्रिवर्ग हैं असर्ग हैं अनिल हैं अनाद हैं अजय हैं अजाद हैं अजन्म हैं अवर्ण हैं अभूत हैं अभर्ण हैं अगंज हैं अभंज हैं अजूज हैं अजंज हैं

नंगी अनामे समस्ती स्वरूपे प्रभंगी परमाते समस्ती प्रभूते कलंक विनाने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजे सवरंग परम रूपे नमो जोग जोगे सवरंग परम सिद्धे नमो राज राजे सवरंग परम बिरदे नमो शस्त्रपाने नमो

कालांकान अनुभूत अंग अभावंगत में तपार गुण गण उदार मुन गण बरनाम निर्भय निरकाम अद्भुत प्रचंड मृत गत अखंड आलछे कंस आदिष्टे तरम सर्वां परनांडिये अंडंड बांडिये चाचरे चंतो प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंकरियम निर्नामे अकामे यंग प्रिया छंद चतर चक्र करता चतर चक्र हरता चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र मानिए चतर चक्र जानिए चात्री छंद न सत्रे न मित्रे न परमंग न पित्रे न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये न चित्रे न मित्रे पर है पवित्र प्रतिशय अधीरशय अदृशय अकृशय भगवती छंतो प्रसाद कथते के आछे जदेश के आ

सुगवर्णग सर्वावर्ण के जगतं कृति हैं के छत्रं छत्री हैं के ब्रह्मं स्वरूपे के अनुपव अनुपे के आद अदेव हैं के आप अभेव हैं के चक्रं बहीन है के एक अधीन है के रोजी रजा कह रही में रहा कह के पाक बेअब है के गैबिल गैब है के अफल गुना है के साहल सुना है के कारण कुनंद है के रोजी दहंद है के राज ग्रहीम है के कर्मं करीम है के सर्वं कली है के सर्वं दली है के सर्वत्र मानिय के सर्वत्र दानिय के सर्वत्र गौणे के सर्वत्र पौणे के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र राजे के सर्वत्र साजे के सर्वत्र दीने के सर्वत्र लीने के सर्वत्र जाओ के सर्वत्र भाओ के सर्वत्र देशे के सर्वत्र पेशे के सर्वत्र काले के सर्वत्र पाले के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र पेखी के सर्वत्र काजय के सर्वत्र राज्य के सर्वत्र शोक है के सर्वत्र पोख है के सर्वत्र त्राण के सर्वत्र प्राण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेशा के सर्वत्र मानिय सदैव प्रदानीय के सर्वत्र जापिय के सर्वत्र थापिय के सर्वत्र पान के सर्वत्र मान के सर्वत्र इंद्र के सर्वत्र चंद्र के सर्वं कलीम के परमंग फहीम के अकाल अलाम के साहेब कलाम के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम सलीख में गनी बुल शिकस्ते गरीब उल परस्ते मुलंदर मुकाने जमीन उल जुमाने तमीजुल तमामे रजूअल निदाने हरीफुल अजीमे रजाय यकीने अनेकल तरंग है अभेद है अभंग है अजीजुल निवाज है गनी मुल खिराज है निरकस स्वरूप है त्रिमुक्त भूत है प्रभगत प्रभा है सो जुग सुदा है सदैव स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्वसाज है समस्तल सलाम है सदैवल कलाम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओम आद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे त्रिभर्गन त्रिवादे अगजे अगाधे सुभंग स्वरूपागे सो सर्वान रागे त्रिपुगत स्वरूप है अच्छे जय छूत है कि नरकम परनाश है पृथ्वी प्रवास है निरकत प्रवाह है सदैव सदा है बेपुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है निरकत सदा है बेपुगत प्रवाह है अनुगत स्वरूप है पर जुगत अनूप है चाचरी छंद अभंग है अनंग है अभेक है अलेख है अभर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है अजय है अभय है अभूत है अधूत है अनास है उदास है अधंध है अभंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिख है अलेख है अभेक है अडा है अगा है असंभ है अभंग है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजात है चारपड़ चंतो प्रसाद सर्वहंता सर्वगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रुआल चंद तौ प्रसाद नमो नरगनासे सदैव प्रगासे अनंग स्वरूपे अभंगम भूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाते अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निर्साग शरीक है अमितो अमेक है सदैव परवा है अजय है अजा है भागवती छंद तौ प्रसाद के जाहिर जहूर है के हाजर हजूर है मेशल सलाम है समस्तल कलाम है के साहिब दिमाग है के उसने चराग है के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी दहंद है के राज करहंद है करीमुल कुमाल है के हुसन जमाल है गनीमुल खराज है गरीबुल निवाज है हरीफुल शकन है हिरासल फकन है कलंकम परनास है सुमस्तल निवास है अगंजल गनीम है रजायक रहीम है सुमस्तल जुबा है के साहिब के राह है के नरकम परनास है बिस्तल निवास है के सर्वर गवन है के हमेशल रवन है तमाम तमीज है समस्त अधीश है परंग परंग ईस है समस्त अधीश है अदेसल अलेख है अभेसल अभेक है जमीन जुमा है अमी कुमा है करीमल कुमाल है के जुर जमाल है के अचलंग प्रकाश है कृमित्व सुभाष है के अजब स्वरूप है।

गुणगन मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रभंज अनगन प्रणाम मुन मन सनाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनभव अनाश मुन मन प्रगास गुणगन प्रणाम जलथन मुदाम अनछिज अंग आसान अभंग उपमा पार गत मित उदार जल थल अमंड दिसविस अभंड जल थल महंत दिसविस बेअंत अनभव अनाश त्रित तर तुरास आजान।

अंठन अबार आडीठ तरम अत ठीठ करम अन बरन अनंत दाता मंत हर बोल मना शांतो प्रसाद करना ले आयार काले है कल खंडर है मैं मंडर है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व वारण है धृत के तरण है जग के करण है मनमानी है जग जानी है सर्वंकार है सर्वंकार है सर्वपाशी है सर्वनाशी है करनाकर है विश्वम्भर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है कलखंडस है परते पर है करनाकर है अजपाजप है अतपातव है अकृताकृता है अमृतामृता है अमृतामृता है करनाकृत है अकृताकृता है तरनी तृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृता है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है कलकायक है विश्वम्भर है करुणालय है निर्मनायक है सरुपायक है पाव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जब जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ताकर है हरताहर है परमात्मा है सर्वात्मा है आत्म बस है जस के जस है पुजांग पुरा छंद नमो सूर सूर्य नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बिंदे नमो बीज बीजे नमो राज संताम संक्षात रूपे नमो परंग ततंग अतंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो त्यान त्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो पूज पूजे नमो पान पाने नमो कले कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंगूते कलंकार रूपे अकलंकार अलंके नमो आसे आसे नमो बांग बंके अभंगी स्वरूपे अनंगी नामे त्रिभंगी त्रिकाले अनंगी कामे एक श्री छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज भंज अलख पख अकाल दयाल अलेख अभेक अनाम अकाम अगा अडा अनाथे परमाथे अजूनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अभर्मंग अगजे अलेखे पुयांग प्रजा छंद नमस्तुल प्रणामे सुमस्तर प्रनासे अगंजन अनामे सुमस्तल निवासे निर्कामंग बभूते सुमस्तं स्वरूपे कुकर्मंग प्रनासी सोतर्मंग प्रभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रनासी करीमल कुरंदा सुमस्तल निवासी अजायब बभूते गजायब गनी में हरियंग करियंग करीम रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुयम्बम सुमंग सर्वदा सर्वजुगते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते दुकालंग प्रनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अभंग भूते तो प्रसाद सोइए सराव सूह सिदान के देख फिरियो कर जोग जति के सूर सुरार दन सुध सुधायक सन समूह अवनिवती के सारी देश को देख रियो मत को न देखत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कोर तुरंग कुरंग से कूद पौन के गौन कुजात निवारे पारी पजान कपूर बलि

कतेब कुरान जमीन समान समान को पेख है पौन हार जति जब तार सब विचार हजार को देख है श्री भगवान पजे बिन भूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सुबा दुरंत दुबा सुसाज सनाह दुर्जा।

0: नहात फिरयो लिए सात समुंदरन लोग गयो पर लोग गो आयो बास कियो बखियान सो बैठ कै ऐसे ऐसे वैस बतायो साच कहो सुन लियो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रपायो कहूं ले पायन पूतरियो सिर कहूं ले लिंग ले ढलकायो कहूं लिखियो हर अवाची दिशा में कहूं पुछा को शीस नवायो को बुतान को पूजत है पास को मृतान को पूजन तायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूड़ क्रिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो
1: कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुट सबे तुम कावो आप हाथ दे मोय बचावो सुखी वसे मोरो परवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर इच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आज संगरिये पूर्ण होए हमारी आशा और भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याओ जो बर चाहो सो तुम ते पाओ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे उबरिये मरण काल का त्रास नवरिये पूजो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तुजो करियो रक्षा अच्छा।

दसकंता काल पाए ब्रह्मा बपरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा ज्योतियो जमन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताए हमारा जमन काल सब जगत बनायो देव दैत जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार किसी को हमारी सकल प्रजा जिन आप सुवारी शिवकन को शिवगुण सुख दियो सतन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतम दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उदकर करा कर तारा प्रजा तरत तब दे अपारा जब आकर्ष करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ देते बदन सृष्ट सब थार आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अल आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जा को पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमानत महामूड किछ भेद न।

महादेव को कह सदा शिव, निरंकार का चिंतन पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कहब सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कई पुपा, अंडज जे राज से तजकिनी, उत्पुज खान बहु रजदीनी, कहो फू राजा हर बैठा, कहो सिमट पयो शंकर कैठा, सगरी सृष्टि दिखाए चंभव, आज जुगा स्वरूप सुजंभव, आवरछा मेरी तुम करो, सिखु बार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे आज तो तब सरनी परे, तिन के दुष्ट दुख है मरे, पुरख जवन पाग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तिहाय है, ताके काल निकट नहीं आए है, रच्छा होए ता सब काला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहे न हर हो।

0: अंतर आत्मा संभाले आप छड सदा रह परने गुरबिन अवर न जाने कोए कह नानक सुनो संतो सो सिख सरमुख होए
1: जे को गुर तेवे मुख होवे बिन सतगुरु मुक्त ना पावे पावे मुक्त ना होर थै कोई पुछो बबे किया जाए अनेक जूनी परम आवे बिन सतगुरु मुक्त ना

सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्तै सार न जाने तत्तै सार न जाने गुरु बाजो तत्तै सार न जाने तही गुणी संसार परम सुत्ता सुत्या रहन विहानी गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वस्या बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु अंत दिन।

सही। अमृत वेले गुरु रामदास महाराज दे इशनान दी सेवा दरबार साहब चल रही, बड़े प्यार भजे हिरदे नाम जपदे जपदे पाठ करदे करदे सवेरे कोई 12:30 ही पहुंच जांदे। मैनू पहले इस सुभागी सेवा बारे पता नहीं सी, पर जद तो पता चलिया है मेरे मन की तड़प आउंदी है। मैं गुरु रामदास जी नू बेनतियां करदा भई महाराज तुहाडे इशनान विच सेवा मिल जाए। कुछ थोड़ा जिहा मैं दा भी ला लैना, इधरों उधरों आके 4-5 बाल्टे महाराज जी दे चरणां ते जल प्रवाहित करन दा इशनान दा सुभाग बण। थानू भी मैं बेनती करना चाहुंदा भई कम अज कम ज्यादा नहीं ते जिंदगी च कुछ दिन गुरु रामदास महाराज जी दे इशनान दी सेवा च शामिल होया करो। कुछ दिन सेवा विच शामिल हो, तुसी महसूस करोगे कि पार ब्रह्म परमेश्वर दे बारगाह दियां गैबी शक्तियां हर रोज अमृत वेले गुरु रामदास महाराज दा इशनान कराउण लई हाजिर होंदियां। ये वड्डी दात है, छोटी दात नहीं। बाबा बुढ़ा भाई लहना करतारपुर विखे खूह गेड़ के गुरु नानक देव जी का इशनान करवाते सन। धन गुरु अंगद देव महाराज जी दे इशनान की सेवा 12 साल धन धन गुरु अमरदास महाराज नूं प्राप्त हुई। बाबा अमरदास गुरु अमरदास हो गए, फिर धन धन गुरु अमरदास महाराज जी दे इशनान की सेवा मात भानी जी नूं प्राप्त हुई। इस इशनान की सेवा की बरकत है कि गुरता गद्दी उन्हां दी कुल विच ही रही, उन्हां दे घर विच ही रही। ये बहुत वड्डी सेवा है, एक बारी जरूर महाराज नूं अरदास करो। हाँ, उत्थे कुछ मर्यादा है, नियमावली है, हर कोई नहीं शामिल हो सकता। जे उस नियमावली नूं मन लिया जाए तो फिर इशनान की सेवा की दात प्राप्त हो सकती है। मन तड़पेगा थोड़ा, मैं जावां पहुंचा, और ये सारी रात जाग के भी साथ संगत थकावट बिल्कुल नहीं होती, शरीर नहीं थकता, मन नहीं अकता। एक करिश्मा वरतदा है, तमाम महापुरुख मुक्त आत्मावां शहीद आत्मावां ब्रह्म ज्ञानी आत्मावां जो हुण शरीर च भी नहीं हैगियां ओ अमृत वेले गुरु रामदास महाराज दा इशनान कराउण वास्ते दरबार साहब आउंदियां। इसे लई तां इह पंगतियां ने, डिठे सबे थाव नहीं तुद जिहा बदहो पुरख बिदातै तां तू सोहिया। ये अनुभव जरूर करके देखो, बड़ा रस बनेगा, बड़ा आनंद दा अनुभव होएगा। महाराज वड्डियां भागां वालियां नूं बख्शदे आ, किस तरह नीवियां तों उच्चे होईए परमेश्वर आराधी है जिदों होईए पतित पुनीता। महाराज जी दे बोल अटल भयो त्रू जाके सिमरन हर निरभय पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा नित। देखो ये मनुख की गल नहीं है, जे एक पशु ने भी नाम जपया है तो भी अमर हो गया। यह पटना साहब जी दे जिथे महाराज का जन्म हुआ। मैं कई बारी सोचता महाराज गुरु नानक देव महाराज जी का वंश यह मजे का ही हैगा है, बाबा शिव राम माता बनारसी उन्हां दे दादी दादा ऐ जामा राव पिंड दे नाल ही पिंड हैगा, इत्थों दे ही सन। नौकरी दे सिलसिले च बाबा कालू जी उत्थे राय पोए दी तलवंडी गए है ते इत्थों दे। फिर श्री गुरु अंगद देव महाराज जी गुरु अमरदास महाराज है।

0: गुर भेटिया है मुक्त दाता, गुरु पारब्रह्म परमेश्वर दा साक्षात खास रूप है। गुरु शक्ति वर्गी होर कोई शक्ति नहीं। मैं एक दिन पढ़ रहा सी भगवान श्री कृष्ण दा परिवारक जीवन कहो जिहा, तो मैं देखिया उन्हां दा राजकुमार जिसका नाम सांबा है, जो राणी लक्ष्मणा तो भगवान श्री कृष्ण जी दी प्रमुख अठ राणिया जो एक दा नाम लक्ष्मण, उसकी कुख तो पैदा होया वड्डा उन्हां दा राजकुमार, ते उसका जीवन शराब च डुबया आया बुरी तरह, वह परवाह नहीं करता। श्री कृष्ण जी के सामने उसने कई बार शराब दियां सुराइयां भन दित्तियां, उन्होंने वस्त्रां ते भी हो सकता है कुछ बूंदा पै गई होण। एक पासे अवतारा का जीवन देखिए, सांबा का जीवन देखिए, शराब च डुबिया है, उस वक्त सारी यादव कुल शराबी होके लड़ लड़ के आपस मर गई सी, पर एक पासे गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे बाबा जोरावर सिंह बाबा अजीत सिंह नूं देखिए, सवा लख नाल सवा सवा लख नाल लड़दिया होया उन्होंने अपना जीवन भेट कर दिता। जो भी अल्लाह यार का कहने नाम का अजीत उन्हें जीता न जाऊंगा, जीता गया तो लौट कर जीता ना आऊंगा। फिर बड़े सोहने बोल ने जोगी अल्लाह यार खां दे, वो कहंदा कटवा दिए इस सामने गीता को सुना कर, रूह फूक दी गोविंद ने औलाद कटा कर, हिंद में बस एक ही तीरथ है यात्रा के लिए, कटवाए बाप ने बेटे जहां खुदा के लिए, तो दूजा नहीं लभ्या जा सकता। महाराज जी दे बचन हन, अवतार शक्ति गुरु शक्ति दे बराबर नहीं है। गुरु भेटिया भेटिया है मुक्त दाता, कुकर्मा तो नशियां तो विषयां तो जन्मां जन्मां दे चक्रां तो मुक्ति देण वाला गुरु गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब जी मिले आना। हाद ही हमारी सफल जाता, वाहिगुरु जी ने साडी जीवन यात्रा गुरु अर्जन देव साहिब कहंदे ने इस तरह सफल कर दित्ती है।
1: मिल संगति गुण गावन,
0: करना की है गुरु दी संगत विच मिलके गुरु दे गुण गाने हन।
1: मन राम नाम कर आसा,
0: सारियां आसा पूर्ण करन वाला गुरु चरणा ते मेहर होण दी आस रख के राम नाम वाहेगुरु वाहेगुरु जपना है।
1: भाओ दूजा बिनस बिनासा,
0: दूजा भाओ संसार दा विकार दा नाश हो जाता है।
1: विच आसा होए निराशी,
0: जे दूजे भाव विच रहिए ते आप भी बिनस जाईदा अपना भी विनाश हो जाए, जे नाम नाल जुड़िए तो दूजे भाव का नाश हो जाता है। विच आसा होए निराशी, गुरु रला विच मनुख का हिरदा आ जाता है।
1: सो जान मिलिया हर पासी,
0: और इस तरह के नाल महाराज कहने ओ सेवक सो जान मिलिया हर पासी, पासी का मतलब है नाल हिरदे विच,

जय माता दी। आज नवरात्रे के तीसरे दिन आपका स्वागत है पुण्य दर्शन में। मैं हूं आपका दास। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज हम मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप मां चंद्र घंटा की महिमा का स्मरण करेंगे, उनके करेंगे पुण्य दर्शन। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र सुशोभित है, इसीलिए उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। उनका स्वरूप साहस, शक्ति और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। लेकिन आज पुण्य दर्शन में हम केवल माता के इस स्वरूप का वर्णन ही नहीं करेंगे, बल्कि यह समझने का प्रयास करेंगे कि उनकी शिक्षाओं से हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत कैसे बनाना है। क्योंकि जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब सही बात जानते हुए भी हम डर के कारण उसका पालन नहीं कर पाते। कभी कभी समाज का डर, कभी लोगों की आलोचना और कभी अपने मन की कमजोरियां हमें आध्यात्मिक मार्ग से पीछे खींचने लगती हैं। ऐसे समय में हमें साहस और विवेक की आवश्यकता होती है, जो हमें मां चंद्र घंटा सिखा रही हैं। जानते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।

पुण्य दर्शन में आप हैं अपने दास के साथ। सच्चा साहस किसे कहते हैं? मां चंद्र घंटा का स्वरूप हमें साहस की प्रेरणा देता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में भी साहस का अर्थ केवल लड़ना नहीं है। असली साहस तो अपने मन की कमजोरियों का सामना करना है। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि क्रोध करना गलत है, फिर भी क्रोध आने पर स्वयं को रोक नहीं पाते। हम जानते हैं कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, किंतु मोबाइल और दूसरी व्यवस्थाओं में अपना समय गंवा देते हैं। हम सही कार्य करना चाहते हैं, किंतु दूसरों की आलोचना के डर से पीछे हट जाते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। ऐसे समय में अपने भीतर आध्यात्मिक दृढ़ता विकसित करनी चाहिए। भगवद गीता के 6 अध्याय में श्लोक 5 में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को अपने मन के द्वारा अपना उत्थान करना चाहिए, ना कि अपना पतन, क्योंकि मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी है और शत्रु भी है। इसका अर्थ है कि हमें अपने मन को अपना मित्र बनाना है, शत्रु नहीं। जब मन हमें साधना से दूर ले जाए, तब दृढ़ निश्चय के साथ उसे वापस भगवान के स्मरण में लगाना है। यही मां चंद्र घंटा के स्वरूप से मिलने वाली एक सुंदर प्रेरणा है। परिस्थितियां कठिन हों, तब भी अपने आध्यात्मिक लक्ष्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, किंतु इस साहस को अपने दैनिक जीवन में उतारें कैसे, बताता हूं थोड़ी देर में। मैं यूं गया, यूं आया।

0: सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।
1: किचन का स्टाइल डल लग दा, बाथरूम वैनिटी सिंपल जिया, हुन टेंशन खत्म करो। आ गया जी जे स्टोन मेसन, पार्टी करनो बनाए एकदम क्लासी। असी बनाने आ डिजाइनर स्टोन बेंच टॉप्स फॉर किचन, स्टाइलिश वैनिटी अते मॉडर्न लॉन्ड्री, ओ भी पोर्सिलिन अते मार्बल नाल, जिथे एलिगेंस मिलती है ड्यूरेबिलिटी नाल। हुन ना सिर्फ घर पर तुहाडी पर्सनैलिटी भी शाइन करेगी स्टोन दे स्टाइल नाल। कॉल करो 0410-045-555 या आज ही विजिट करो 104 कॉलिंस रोड मेल्टन।
0: आप सुन रहे हैं पुण्य दर्शन।

पुण्य दर्शन में पुनः आपका स्वागत है। तो मित्रों, आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाने के तीन उपाय आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा की महिमा से श्रवण कर रहे हैं। उनकी प्रेरणा से अपने आध्यात्मिक जीवन को मजबूत बनाने के तीन छोटे छोटे संकल्प अवश्य लें। पहला, प्रतिदिन भगवान का नाम, उनका गुण रूप लीला या उनके नाम का जप करने के लिए निश्चित समय निकालें। मन भटके तब भी हार ना माने। दूसरा, जब क्रोध, अहंकार या ईर्ष्या मन पर हावी होने लगे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय रुकें और सोचें कि क्या मेरा व्यवहार भगवान को प्रसन्न करने वाला है। तीसरा, सही मार्ग पर चलने का साहस रखें। लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपनी आध्यात्मिक साधना और अच्छे आचरण को कभी ना छोड़ें। तो आज मां चंद्र घंटा के पूजन के अवसर पर प्रार्थना अवश्य करें कि हे माता रानी, हमें साहस, संयम और सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि हम अपने मन की कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकें और भगवान की भक्ति में दृढ़ बन सकें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा, फिर लेकर आऊंगा आपके लिए पुण्य दर्शन। मैं हूं आपका दास, नमस्कार।

0: ब्रोकर्स अपने इंश्योरेंस से हर लोड ले। याद रखो बस अमरिंदर गिद्दा कॉल 0491-999-555। शर्ता लागू।
1: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
2: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
2: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com।
3: वाओ, तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है। मेनू भी दस दे सीक्रेट।
4: अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड घी दा। न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार, ना ता इस विच ऑयल, ना ही कोई कलर, हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स। बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है।
3: तुसे भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड घी अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो। विजिट गोल्ड लीफ डेयरी .com।
5: Attention, ladies and gentlemen, this is your captain. 30 flights, Melbourne to India ya Pakistan, Sydney to India ya Pakistan, kithe bhi ja sakti hai.
6: Attention, please. Dil kehta hai, kar jana hai. Flight search karke thak gaye. Switch karo Hi-Fi Travel se. Your local travel agency. Rated 4.9 star on Google. Book now, pay later. Flight book karni hai? Aaj hi call karo 1300-533-311 te. Ya online book karo hifitravels.com.au te.
7: Delhi ki yatra ka vichar bana rahe hain? Melbourne se Qantas ki seedhi udaan uplabdh hai. Bazaaron ki ronak dekhein ya apno ke saath fir se samay bitayein. Adbhut smarakon ko niharein ya ghar ke bane bhojan ka maza lein. Chahe aap doston aur parivar se milne ja rahe hon ya kisi nayi jagah ki khoj kar rahe hon. Qantas ki behtareen सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।

दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पेय, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।

0: दिल्ली विच करे मेरी भैन, वो बस एक रंग देख के समझ आती है कि उसनु अपनी पसंद की साड़ी मिल गई है। इसलिए भावे तुहाडी भैन नु अपनी पसंद चुनने लई वक्त लगता होवे जां उसने पहला ही अपना मन बना लिया होवे, रिमिटली राही अपने घर पैसे भेजना सिर्फ एक लैन देन नहीं है, क्योंकि जिथे पैसा अगे वधदा है उथे जिंदगी अगे वधदी है। रिमिटली, दुनिया भर विच पैसे भेजो।
1: व्याह, खुशी या किसी भी खास मौके लिए ज्वेलरी होनी चाहिए है खास, तो ना ज्वेलर्स लेके आए ने लेटेस्ट गोल्ड, डायमंड, बुलियन, सिल्वर ते ब्राइडल कलेक्शन, हर स्टाइल ते हर ओकेजन ले जेन्युइन ज्वेलरी, जेन्युइन प्राइसिंग ते वधिया कस्टमर सर्विस दे नाल। गोल्ड ज्वेलरी ते फास्ट लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल। विजिट करो 5/150 फार्मर्स रोड त्रुगनीना अते 347 लॉन्सडेल स्ट्रीट डैंडीनोंग। तुन्ना ज्वेलर्स, परोसे दी निशानी।
2: दिल्ली की यात्रा का विचार बना रहे हैं? मेलबर्न से क्वांटस की सीधी उड़ान उपलब्ध है। बाजारों की रौनक देखें या अपनों के साथ फिर से समय बिताएं, अद्भुत स्मारकों को निहारें या घर के बने भोजन का मजा लें। चाहे आप दोस्तों और परिवार से मिलने जा रहे हों या किसी नई जगह की खोज कर रहे हों, क्वांटस की बेहतरीन सेवा का अनुभव करें जिसमें आपका भोजन, पैसा, सामान और मनोरंजन शामिल है। आज ही क्वांटस के साथ दिल्ली की नॉनस्टॉप उड़ान बुक कीजिए। 26 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक उपलब्ध। नियम और शर्तें लागू।
3: ਜੀਰੋ 406-660-960 ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ bansalimmigration.com.au।

0: सोना चाहिदा
1: परोसा चाहिदा
0: क्वालिटी ते बाईबैक वी चाहिदा चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे जिथे बाई कैरेट गोल्ड क्लासी सिल्वर डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स कस्टम ऑर्डर ते रेडी पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत कैश चाहिदा गोल्ड लोन इजी एंड सेफ रिपेयर बुलियन बाइंग सेलिंग सब एक ही जगह ते ओ भी वाजिब रेट ते दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक कॉल 0493536042
1: टेंशन मेरी टेंशन
2: की होया
1: एथे इमिग्रेशन दे इन्ने पंगे ने यार मुकदे ही नहीं
2: काका जी टेंशन छड्डो फोन चको कॉल करो वीवा इमिग्रेशन नु जिथे इमिग्रेशन एक्सपर्ट हरपाल सिंह बाजवा एम्प्लॉय स्पॉन्सर पार्टनर या पेरेंट्स या वीजा स्किल्ड माइग्रेशन स्टूडेंट वीजा MRT या RRT अपील्स ते स्किल्स असेसमेंट्स दे माहिर बैठे ने हुणे अपॉइंटमेंट ली कॉल करो 0410-530-530
1: या 90-77-93
2: या ईमेल info@vivaimmigration.com.au
1: याद रखो 9077973
2: वीवा इमिग्रेशन एंड एजुकेशन कंसल्टेंट
1: हर कदम तुआडे नाल
3: वाओ तेरी सब्जी दी खुशबू अते टेस्ट विच कुछ ता कमाल है मेनू भी दस दे सीक्रेट अमृत ए कमाल है गोल्ड लीफ डेयरी दे प्योर न्यूजीलैंड टी दा न्यूजीलैंड विच फ्री रेंज ग्रास फेड गावां दे दूध तो तैयार ना ता इस विच ऑयल ना ही कोई कलर हार्मोन्स या एंटीबायोटिक्स बिल्कुल प्योर है की प्लास्टिक दे डब्बियां च नहीं बल्कि ग्लास कंटेनर च पैक हुंदा है
4: तुसी भी आज ही बाय करो गोल्ड लीफ दा प्योर न्यूजीलैंड की अपने नेड़े दे इंडियन ग्रोसरी स्टोर तो विजिट goldleafdairy.com
5: मैंने नहीं सोचा था कि यह नौकरी मेरे लिए होगी लेकिन मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मेरे पास पहले से जो कौशल हैं वे बिल्कुल वही हैं जो मुझे एक अच्छी जेल अधिकारी बनने के लिए चाहिए थे अपने बातचीत के कौशल का उपयोग करना और एक अच्छी रोल मॉडल बनना और इस सबका अनुभव मुझे मेरे सहयोगी साथियों के साथ होता है यदि आप भी अपने कौशल का उपयोग करके एक ऐसा करियर बनाना चाहते हैं जो फायदेमंद और सुरक्षित हो तो अभी आवेदन करें सर्च करें करेक्शंस विक्टोरिया करियर्स विक्टोरियन सरकार 1 ट्रेजरी प्लेस मेलबोर्न द्वारा अधिकृत
6: कितने बज गई तेरी गड्डी
7: गड्डी तो ठीक हो जू पर इंश्योरेंस वालियां नू लीगल वालियां नू इत्थे परदेस विच समझाऊंगा किवे
8: तेरे वांग किन्ने ही अपने भैन भरावां दी टेंशन मिंटां च दूर कीती है सिंक स्मैश रिपेयर वालियां ने इन्हां दे कोल अपनी मां बोली च काम करन वाले लॉयर्स दी फ्री ऑफ कॉस्ट टीम ऑल मेजर एंड माइनर एक्सीडेंटल लाइफ टाइम वारंटी नाल वर्क एंड पेंट फ्री लोन कार दी सर्विस मिलदी है ऑल प्राइवेट एंड इंश्योरेंस ऑथराइज्ड काम अते फ्री लीगल एडवाइस लई कॉल करो 0383857748 ते सिंक स्मैश रिपेयर 8 ग्रेस वे रेवन हॉल
9: चलदी दा नाम गड्डी आते सुनया ही होना ते तुहाडी गड्डी कोई भी होवे उनु चलाउन ले ऑल मेजर ब्रांड्स दे टायर्स अलॉय व्हील्स ले याद रखो टायर फोर्स जिना को लॉग बुक सर्विसिंग मैकेनिकल रिपेयर्स इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट्स दी सुविधा नाल अवेलेबल ने तुहाडी सेवा विच पिछले 15 सालां तो ऑलवेज वन स्टॉप शॉप टायर फोर्स यूनिट 1 19-25 सोमर्टन रोड कैंपलफील्ड कॉल 0390866655 और विजिट tireforce.com.au
10: Are you ready to start something? Do what you love? With 38 free TAFE courses and over 130 nationally recognised qualifications, including health, nursing, community services and justice, come to Kangan Institute, the Australian Large Training Provider of the Year 2022. No ATAR needed. It's time to unleash you at Kangan Institute. Call 13 TAFE to apply now or visit kangan.edu.au. Eligibility criteria applies. Some or all of this training is delivered with Victorian and Commonwealth Government funding. RTO 3077.
11: ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ
12: ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਟੋਇਟਾ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੈਸਟ ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਗੂਗਲ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਟੋਇਟਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਨੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ
11: ਬੈਸਟੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0431-465-186 ਤੇ 212-216 ਓਲਡ ਜੀ ਲੌਂਗ ਰੋਡ ਹਾਪਰਸ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਵੈਰੀ ਬੀ ਟੋਯੋਟਾ ਦ ਸਮਾਰਟ ਚੋਇਸ

0: सोना चाहिदा,
1: भरोसा चाहिदा,
0: क्वालिटी ते बायबैक भी चाहिदा। चले आओ दिल्ली ज्वेलर्स स्टॉकलैंड पॉइंट कुक विखे, जिथे बाई कैरेट गोल्ड, क्लासी सिल्वर, डेजलिंग डायमंड्स अते जेमस्टोन्स, कस्टम ज्वेलरी थोड़े ऑर्डर ते रेडी। पुराना सोना बायबैक एंड एक्सचेंज तुरंत। कैश चाहिदा, गोल्ड लोन इजी एंड सेफ, रिपेयर, बुलियन बाइंग, सेलिंग सब एक ही जगह, ते ओ भी वाजिब रेट ते। दिल्ली ज्वेलर्स 310/2 मेन स्ट्रीट पॉइंट कुक, कॉल 0493536042।
2: मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच अपने हर भैन भरा नू उना दे देश दा स्वाद अते मसाले एथे दे रहा है। तुसी एथे इंडियन मसाले, दालां, ग्रोसरी दा हर समान वाजिब रेट ते ले सकदे हो। पाओ कॉस्मेटिक दी हर आइटम वी, नाले घर विच होवे कोई फंक्शन या त्योहार, मिठाई दी एथे मिलेगी तुहानू वैरायटी बेशुमार। ग्रोसरी दी होम डिलीवरी ले नंबर लिख लो 0430-123-394। दियो रेडियो हांजी दा हवाला ते पाओ भारी डिस्काउंट हर शॉपिंग ते। मेरा देश इनक्रेडिबल इंडिया त्रुगनिना विच।
3: ऑस्ट्रेलिया च अपना कर लेना है या कंस्ट्रक्शन करवानी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस करवानी, नवी कार खरीदनी या बिजनेस नो आगे बढ़ाना है, ता टेंशन क्यों? टू फोल्ड लेंडिंग डैंडीनोंग है ना। होम लोन तो रीफाइनेंसिंग तक, कंस्ट्रक्शन लोन तो बिजनेस लोन या कार लोन, हर लोन ले 40 तो वध लेंडर्स दे नाल तुहाडे लई बेस्ट डील, लो क्रेडिट स्कोर, वेलकम। कॉल राज 0494-763-700 और व्हाट्सएप 2Fold Lending।